कहिंदे जदों असीं संसार दी रचना कीती ना रब अकाल पुरख परम पिता ने जब पहले हम सृष्टि बनाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं दस रहे ने अकाल पुरख बाच जब पहले हम सृष्टि बनाई दैंच रते दुष्ट दुखदाई ते आरंभता करदे ने भी एक ओंकार तों संसार दी उत्पत्ति होई। काल सैन पहला राजा सी, उस तों बाद दूजा राजा आया काल केत, काल केत तों बाद तीजा राजा आया क्रूर बरस, क्रूर बरस तों बाद चौथा राजा आया काल युद्ध, ते काल युद्ध दे विचों फिर सारा

पोहम पातुक बिना से गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुर अमरदास।

फिर पटकेरे ने तेन दुख न भुख तिन निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, ओ निर्धन नहीं रह सकदा, ओ निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसदे। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, ओ किसे दा गुलाम भी नहीं होऊंगा। तिनर सह सहज समपे, ओ गुलाम भी किसे दा नहीं होऊंगा, ते हर एक विच ओनू वेखूंगा। सहज समपे तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे दा अर्थ है दुलीचे दा गलीचे, ओदा स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जूगा गलीचे विषय होणगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, ओदे विच एनी शक्ति आ जूगी ओ राज खो भी सकूगा ते राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू वसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ए सारे सुख ओनू मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ए सुख मिलनगे किनू ए वड्याईयां मिलनगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिन्न जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाणगे, ए सारे सुख ए सारे

0: मोहल्ला पहला
1: ये मुहत्ता कर्म है कर्म पितरी दे
0: अगे वसे आनी है पितरी चोट करे वड़ी हाथ लाल।

पहला सुचा आप होए सुच बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जीविया लगा पढ़न श्लोक

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदी विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया के विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु की कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु की बख्शिश और समय का यह निचोड़ होगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

भगवान पागे पहना सुन भोगी भगत विछल दुख पंजना जप सदा अरोगी रसिया रखवाला रचनिहार जो परेश होगी।

और वार पार के दानिया और वार पार के दानिया लिख ले आल पता मुझे जम डंड न।

0: हर हर नाम निधान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो।
0: हर हर नाम निधान है,

सितंबर स्वामी सच में आचे साथ रहे, सबको सत समावे, रिट कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सुन।

சாக்கிரமான் சைத்து एक नहीं जाके तुमको समझाए नानक से बता दीजिए किसे नहीं कर सुनवाए हरता के मारा बाप अक्षरा

0: आप क्राय करे आप हम कैसो करीब का नान करना दिल किया
1: जैसे तो सब कुछ मिले।

0: तेरा कर्म जित भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी दी चुगी विच पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा। कुछ अदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीलनी भुख लगी है आखो श्रीवाल। पीलनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला, रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है, तुरे तां हन जेड़ा तुरिया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा, गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है, पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, ए तो बड़ी करड़ी मनसल है औखी काटी, पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी, चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है, अज रब तुठा है अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चलिए। मैं रब नू मनाउण वास्ते रब नू रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हैं पर अजे ज़ियारत नहीं हुई कि यो सिंगार मिलन के ताहीं।